सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

hagan sin que yo del sin papá que tiene Machine.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। Vale.

सबको याद है मन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्जो क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है। इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक ही

0: भी साकार में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है

स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फ्रिश्ट जैसे

Sede só.

0: Jenna. To je practice. Mansa seva karne mein bhi sahyog denge. Aur powerful yoga ki sthiti mein bhi bahut madad mile.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: il sindaco.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Jeez. Crop, crop me. Heart center wale. Bola kar. Unka foundation.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात, ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्तों नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। न्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रही है, तो अभी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारचनी में चारटी। Yeah, that.

Óyeme. Man sabe, baby.

aprendería que ocupar. Atención de Teo. Yeah.

Masih kena rakar tinggi.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति बीत जाए मट्टी है ना, मट्टी मट्टी में मिल जाती। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई कोने से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, सने नहीं है, देखने का ये कौन बहुत अच्छा, तो कौन का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं किसमें सेवा की विशेषता हो, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा सने शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ ज्ञान में भी ध्यान नहीं पड़ा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Verena. Potřete. Shit.

थोड़ा खुर्च और के फिक्र में आ जाते हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा

Samant Sambarak.

las han hecho por puro tiempo.

कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखते।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jeg er det fulde stoppet.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: serie con Sibat.
1: Yeah.

0: सब चांस मिले सेवा का, ये नहीं सोचो चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Charity. Har ghar mein koi na koi dukh ka karan hai. Aise dukhiyon ko sukh dene wala kaun? Bolo. सेवा को सारे दिन में चेक करो कितना समय जैसे स्व के व्रत देते हो वैसे मनसा सेवा के व्रत कितना समय दिया. Yeah.

द्वारा परिवर्तन करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनते रहते हैं,

Jimmy Ron.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, डरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है? मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ। उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते। माया भी सुन रही है तो ये करेंगी ना, लेकिन आप तो

0: आप याद करो मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी, शरारत करते हैं बाप दादा ने, फिर भी मुबारक थी जो पुरुषार्थ करके

c'est pas...

रिश्ते स्वरूप की स्थिति।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

a pee-pee.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Scarlet.

esclavos.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वो कसे भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात

Sleep.

Sorry.

Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और संस्कार कमजोरों के ना

करता
Sabrupsimatantkarum. Tanna se, manna se.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: नंद ही आनंद।
1: अच्छा सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों किया? कहते हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रैप दिल पढ़ना ही पड़ता। कहते अच्छा, अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Echo.

चेकनो काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल वैसे कहते काम काज करते भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बार कहते हैं बाबा, आज वो चैन बाबा भूल गए। बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए। 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए। इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया को कभी कभी खातरी भी कर देते, कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है ना थोड़ा, अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती। माया के फॉलो फादर की बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थ ये ना संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना, ये माया कोई फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं तो सदा शिकल देंगे। तो कैसी शिकल देंगे? कभी कभी शिकल अच्छी नहीं होती। सोच में सोच बहुत करते, क्या करूं, ये करूं, नहीं करूं, फायदा होगा, ठीक होगा, सोचते बहुत। बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों? सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहरा जाती है। तो बैठ जाओ, फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय तो किसके ऊपर विजय बनता, परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज सर

कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूरी है।

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Sati or Saki. Jab Patata Sate to Saki Panki Sit Sata Masput Reti Keti Sabio. Bab tata sate. Lekin maya kapar bhavi parta rehta aur kehte bhi rehte ho bab tata sate. जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ लाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो दिखती नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त छोड़ो नहीं, जो अलग अलग बुशारत करते हो ना उसमें थक जाते हो। आज मन

0: kalau aja kagia saman sampara kagia tak jadi iki pusyarat karo saki katak tenai jorna ar kushni ma
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं सीजन का फल सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना ना, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, कभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे, जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप सभी अनुभवी के पाप का निर्स्वार्थ अवनाशी सने

course.

Sada ese So

मस्तक में अनुभव करते हैं। अपना शीशन है सारा कलप, सनई बना देता निरंतर याद, निरंतर लौ में लीन होने वाली आत्मा सदाई राई पर।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: इस सीट पर सेट हो के फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिक बन के चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहज।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

어쩌고 밥다나 나의 브라만 머리와 매 아내기 क्यों

0: Lord Parivarko. Take Dolia. Babdata Samaste. Ke aap chahi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे क्या करते, कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

結構。

Sarva-atmaukum, light those.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Last number maybe।

fast.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा मां का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: This is

subject me. Achieve mastery.

Listen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा को करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का पल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते

0: popiti kaj dete. Atma deko isme paso. Lekin kis sanskar se dekte. Kya atma ke original sanskar se connection me aate ho. Ke vartaman sanskar bhi aate hai samne. To paap kehte hai ke aaj se kisi ko bhi ek to atma roop me dekho. लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं. अभी आत्मा रूप में देखते हो लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती. तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी. तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

करत संकल्प का तूफान आ गया है। ऐसे समय पर आप अपने कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति केटर समय पर करके देखिए। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर

estetica. Appears per attention kichwana chet. Kyunki prakriti apne bina bina rang dikhane shuru kar diye. Janwar kya kya ho raha hai wo aap sab zyada jante aise मनबुद्धि को भटकाने वाली बातें आने ही है, तो अभी ये प्रैक्टिस करो. Sick.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Tessa.

0: trusts me. Brahman Atma Ibi. Master Tattavano. Or Tito Medune. Mochidena. Sano se parpuro totite jao ye kyun karta ye kyun kehta ye soch nahi karo rehm dil ban
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: परिवर्तन लाना है वो सभी के ध्यान पर है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने है, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा अपन ने चारों ओर के बच्चों को देखा।

Yep.

0: हो सकता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है
2: मुश्किल लगता है।

0: कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्रह्मांड जीवन मुश्किल नहीं है। ब्रह्मांड के बजाय यात्री बन जाते हो तो यात्री का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना, युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय विदेश जी, जय भारत वंश। है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। श्रम हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नास है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजय, एक बार नहीं अनेक बार के विजयी आत्माएं। पीछे वाले बच्चे विजयी हो, हाँ विजयी हो, हाँ ये कुर्सी वाले बच्चे कुर्सी पर बैठे हो, अच्छे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं। इसको अच्छा

Tiens,

dulce. Mira, papá. Tallalo, que palo, papá. Apieches. It's true.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: और आप सोचो, ब्रह्मन आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है,

रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछती है कितना प्यार है, तो कहती है आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होती है कि कितने भोले बच्चे।

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब बाप कहा मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।

0: ये तो चा नहीं है, सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सचने बन के चल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

里啦。Beauty.

So

Achei.

就算都是。

person.

Son.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो गुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया बरकर देखा खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ खेल देखा बरकर देखा या अपने मूर्ति कला के खेल में बिजी रहे कि सब समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट
2: सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट

Florida.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दीवार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना ही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Okay.

Kurz.

0: Shake. Boleh on sabaja.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवस आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Swag.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।